माजा तजिनी इला ऐशुन्य सिलु अजा ऐन तमशी सहा लाला हुसनिन वहा माजा तजिनी इला ऐशुन्य सिलु अजा ऐन तमशी सहा लाला हुसनिन।